33 करोड़ देवी देवतियां ने चात पाई, ए कौन गा रहे है की वेख्या तन गुरु नानक सच्चे पातशाह मर्दाने दी बांह विच बांह पाई है ते झूमदे हुए जा रहे हन ते

तू सच आख्या सी जदों याद करेगा मैं आवांगा आ वेखना घर दी की हालत हो गई मां ने रो रो के अखां गवा दित्तियां तेरे प्यार गुरु नानक पातशाह आए आवाज दित्ती मां माता त्रिपता ने पछाण लिया ए तां मेरे लाल दी आवाज ए तां मेरे नानक दी आवाज भज के आई अखां ना होण करके ठोकर खा गुरु नानक पातशाह ने अगा होके मां नूं मां दे गल ना लगे माता त्रिपता ने आख्या बेटा मैं तेरे स्पर्श तां कर रही हां लेकिन दर्शन नहीं कर सकती क्योंकि रो रो के तेरे याद विच मैं अखां गवा बैठी हजूर कहन लगे ए केड़ी वड्डी गल है मां एक बारी अखां बंद करके खोल दे अखां बंद करके खोलिया तां की वेख्या चौदवी दा चंद्रमा चढ़िया होया सामने गुरु नानक पातशाह खड़े आख्या बेटा पिता नूं मिलिया के कोई नहीं ओ तां जिस वेले रोटी खाउंदे ने यही कहंदे हन कि इस हथ दे नाल मैं गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मार तां हथ विचों बुरकी डिग पैंदी है मर्यादा पुरशोत्तम गुरु नानक सच्चे पातशाह आए मैं ता कालू पिता दे चरणा नूं हाथ लाया चरण स्पर्श कीते पिता कालू ने गल ना ला लिया बेटा मेरे तो पहले भी राय बुलार नूं मिल जेड़ा ओ जंगल विच बन हेठा बैठा है गुरु नानक कूक रहे गुरु नानक सच्चे पातशाह आए बन हेठा की वेख्या राय जी कदे इस पासे मुंह करके बैंदा है कदे इस पासे मुंह करके बैठे सोचदा खबरे इथो ना आ जाऊं फिर सोचदा खबरे दूजे पास्यों ना आ जाऊं मेरी पिठ ना हो जाए ताई आ सोच रिया ते पिछे आवाज आई राय जी असी आ गए दी आवाज सुनी राय ने परत के वेख्या सामने गुरु नानक खड़ोता चरना ते डिग पिया आज सारे दी पुकार गुरु नानक ने सुनी ते सारे हुण एक मन

एक है हरी हरी, ए ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान ना करी ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

मनुख जप भी करदा है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखदे हन और रोजाना दा नेम भी करदे हन, सवेरे उठ के परमात्मा दी भगती करदे हन, उसकी पूजा करदे हन। साहिब फरमान करदे हन कि सारा कुछ परमेश्वर दी कृपा नाल गुरु तो ही प्राप्त हुंदा है।

ताप जो तप है, व्रत है नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

देव पिया मानो के नाम जपण वालियां दे देवते, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नाम देव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राए, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रे साए। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन होए ते भगत नामदेव दे प्यार वाला दूध नारायण ने पी के बख्शा कीतिया। ते इसे तरह भगत नामदेव संतां दा संग कर दे, नाम जप दे, परमात्मा नू याद कर दे, अपनी उम्र बितांदे गए। थोड़े जे वड्डे होए ते उस वक्त दे महान योगी, महान तपीश्वर जिन्हां दा इक पंथ चलदा सी, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए ते चल पे उना दे

दूर बाहर स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है, मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया, देखिया भाई ए मेरे नाल जो चल

ज्ञानेश्वर जी महाराज ने भगत जी तुसी भी पानी पियो ते नामदेव जी ने इनकार कर दिता। कहन लगे महाराज मैं केवल अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहुंदा, मैं चाहुंदा हां कि आने वाले समय दे विच जो राही इस राह तो गुजरन ए कुआं उना दी भी प्यास बुझावे। एदे विच जल जो है ओ नको नक परा। ज्ञानेश्वर जी ने समझाया बच्चे तू अपनी प्यास बुझा ता जो असी अगे भी राहे पैना है और द्वारका नगरी पहुंचना है।

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक राजी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है। जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने, उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

जस बगल समादन मुख चूड़ बै भुख नुसारन त्रैपाल ते हाल विचारन गल माला तिलक लिलाटन दोई तोती वस्त्रक पाटन।

0: You're listening to Seeknet Radio.
1: बेटा, आज मैं तनु भगत नामदेव जी की बानी सुनाना। मैं अंधले की देख तेरा नाम खुंडकारा।
2: खुंडकारा क्यों लगूंगे?
1: खुंडकारा लकड़ी दे उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा।
2: पटरा क्यों दा?
1: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोंदे ने। भगत नामदेव जी दाद दे छीने सन ना, कपड़े धोंदे धोंदे अपनी आत्मा नु हरी नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम की उंगली टेके जिन्नी के पटरे नु खुंदकारे थी।

जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। बहुता बोलन चखड़ होए, बिन बोले जाने सब सोए। जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेबा दिती बोले तात। जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए। जेता मोह प्रीत स्वाद, सभा कालख दागां दाग। दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नहीं जाए। आख्या जो संसार ते आके नाम नहीं जप के जांदा, उस परमेश्वर दी भगती करके नहीं जांदा। ओ तां अपने मथे ते दोषां दे दाग ला के जांदा, और ऐसे दाग दोष लगे हुए मथे वाले नूं पापी नूं फिर नरक भी नहीं चलदे। सत सिगत बोलो श्री। जेता मोह प्रीत स्वाद, सभा कालख दागां दाग। दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नहीं जाए। कर्म मिले आखण तेरा नाओ, जित लग तरना होर नहीं थाओ। जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्व दातार। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जदों ए शब्द उत्थे उचारिया, जिवें जिवें साहब जी बाणी पढ़दे हन, कौड़ी दे तन दा दुख घटदा जा रहा। चरण पकड़ के कहन लगा, गरीब निवाज हुण आए हो तां मैनू इस दुख तो निवृत्त कर दिओ। ऐसे करुणा दे विच जदों अरदास कीती, मन करके गुरु नानक पातशाह दे चरणा विच, साहब जी कहन लगे, मर्दानिया जल लै के आ भाई। ते मर्दाना जल लियाया, साहब जी ने जल दे छटे कौड़ी दे शरीर ते मार के आखिया, जप भाई श्री वाहिगुरु, जप सतनाम श्री वाहिगुरु। जिवें जिवें कौड़ी वाहिगुरु जपद, वाहिगुरु जपद, उवें उवें तन दा कोड़ निवृत्त हो रहा। सत सगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी बाणी सुन के कौड़ी दे तन दा कोड़ भी दूर हो गया, ते अज गुरु नानक दे दर्शन करके मन भी अरोग हो गया। तन मन करके जेड़ा रोगी सी, तन गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन करके तन दा भी रोग चला गया, ते बाणी सुन के मन भी अरोग हो गया। सात सगत बोलो श्री। साहब जी कहन लगे, भाई होर मंग की मंगदा। गरीब निवाज बहुता धन पाया, लेकिन धन दे नाल कोई सुख ना मिलिया। धन पा के जे मन सुखी हो जांदा तां धन बहुत सी। महल माड़ियां पा के जे मन सुखी हो जांदा तां बहुत महल हन। माड़ियां दितियां तुसी, लेकिन मन तां भी सुखी ना होया। तियां पुत्रां नूं पा के जे मन सुखी होंदा तां गरीब निवाज फिर जदों शरीर कौड़ी हो गया तां उन्हां ने भी कट दिता, उन्हां दा भी सुख ना मिलिया। सुख तां तेरे नाम विच है, सुख तां तेरी भगती विच है, सुख तां अमृत वेले उठ के जपण विच है श्री वाहिगुरु। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले, आप क्या करदे सन, जो अमृत वेले उठ के गुरु नानक दे चरणां नाल जुड़दा है भाई, उसनों कदे किसे वस्त दी कमी नहीं रह सकती। ओ तन और मन करके सदा सुखी रवेगा जो जपेगा श्री वाहिगुरु। हुण कौड़ी गुरु नानक पातशाह दे चरण पकड़ के की अरदास कर रहा है।

परमेश्वर दा नाम विसार के जे कोई सुख मंगदा है आख्या उसनू तां सुपने विच भी कदे सुख प्राप्त नहीं हो सकदा। सत संगत बोलो श्री।

तू भटकना छड़ दे, तू डोलना छड़ दे, तू पदार्थां दा नेहो छड़ दे, आ जा निज घर दे विच, जो रस मानन लई तू एथे संसार विच आया, ओ रस है परमेश्वर दे नाम दा, सिमरन दा, ते जिन्हां ने मान लिया उन्होंने रंग रलियां मानिया, उन्होंने ऐसियां पदवियां प्राप्त कीतियां के सूख महल जाके ऊच द्वारे तां मैं वासें भगत प्यारे। इसलिए भाई तू ही जपेगा तो फिर ऐसा ही तेनू सत्कार मिलेगा, ऐसा ही प्यार मिलेगा गुरु दा, ते जदों अगे जाएगा फिर सारे थां ते तेरा आदर होवेगा। ओ मेरे मन परदेसी तू

मान सकता है जेड़ा अपने घर आ गया, जिदा मन भटक रहा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी अग विच जल रहा है। ए पटकिया होया मन किते टिकदा नहीं, जिवें अक दे अंब नालों तूंबा बिछड़िया, फिर पटकन तो बिना होर कुछ नहीं। जिधर दी हवा है हवा दे बुलियां विच तके खांदा फिरदा। ऐसे तरह जिन्हां ने गुरु दे चरण छड़ के अपने निज घर नूं छड़ के जो कूड़िया पदार्थां दे नाल नेउ लाई बैठे हन, हजूर कहिंदे ने जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माहे। जेड़ा घर छड़ जाने उदे लई तू रात दिन भटक रहा, ते जिथे जाए तुद वर्तना तिस की चिंता ना है। जिथे तू सदीवी काल वसना है, जेड़ा कार्य करन लई तू संसार ते आया है, उस घर दी कोई तैनू चिंता ही नहीं। ए शरीर भी एक घर है जिदे अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु दी जोत है। मनुख शरीर लई सब कुछ करदा है, चंगे वस्त्र पहनदा है, खांदा पींदा पहनदा, सुगंधियां लाउंदा, सेजावां मानदा, पर इसने आत्मा नूं जिस आत्मा दे सदके शरीर चल रहा है उसनूं भुखिया ही मार छड्या, उसनूं कदे नाम दा भोजन नहीं दिता, कदे गुरु दी कृपा दे बस्तर नहीं पहनाए, कदी सत संगत दी सुगंधी नहीं लाई। हजूर कहिंदे ने जे तू सिमरन नहीं कर रहा, अमृत वेले जाग के इशनान करके अकाल पुरख वाहिगुरु दी भगती नहीं करदा, तां तू अपनी आत्मा दा आप घात कर रहे। दुर्लभ देह पाई वडभागी, नाम ना जपे ता आत्म घाती, मर ना जाई जै बिसरत नाम, नाम भी हून जीवन कौन काम। हजूर कहिंदे नाम तो बिना तेरा जीवन केड़े काम है, ओ पशु मर जावे तां वी कम कर जांदा, दस काज सवार जांदा।

फिर तेरी देही किसे काम नहीं आउनी, ए राख दी टेरी हो जाएगी। इसलिए गुरु रामदास पातशाह जी कह रहे हैं, ओ मेरे मन परदेसी वे, आओ करे तू क्यों भटकदा है, ए जो कुछ तेरिया अखां वेख रहियां हन, ए ज्यों सपना अर वेखना, ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं, नानक के हो बखान। इसलिए भाई अपने निज घर विच आ, विचार कर जिस कार्य लई तू आया, तैसी वस्तु विसाहिए जैसी निभ है नाल, वस्तु ओ कठी कर जो तेरे नाल चलन वाली है। एता जो कुछ तेरिया अखां वेख रहियां हन, जदों भी प्राण पंखेरू उड़न गए, ए शिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। इसलिए मेरे मन परदेसी वे, तू परदेश विच आए, ए जगत एक सराय है, जो मनुख आया है सराय दे विच बैठ, ते सराय नू मुसाफर खाने नू जेड़ा मनुख अपना घर समझ के बह जांदा है, उनू कोई सियाना नहीं कहेगा, उनू कह देंदे हन भाई ए कोई मूर्ख है, क्योंकि मुसाफर खाना है। राती आउंदा है मुसाफर, परभाती तुर जांदा है, ते जे उसनू जफा पा के बह जावे भाई ये मेरा है, ता फिर सियाणप नहीं। इसलिए तू परदेसी है। धन गुरु रामदास पातशाह शब्द विच कहंदे हन, मेरे मन परदेसी वे, आओ करे अपने निज घर विच आ भाई, अमृत वेले उठ के इशनान करिए, ते फिर सत संगत विच बह के जपिए श्री वाहिगुरु। आओ करो गुरु रामदास पातशाह जी दे सोने दर्शन, क्योंकि बाणी दा दर्शन हजूर बख्शिश करदे हन, कोई प्यार दे नाल बाणी पढ़े, प्यार दे नाल सुने, ए गुरु का दर्शन है।

अभेदता प्राप्त करन उस वेले गुरु नानक नु करता पुरख वाहिगुरु ने एक खजाना बख्शिश कीता। ऐसा अमुल खजाना ज्यो ज्यो इस नु खाओ खर्चो ए वधदा जांदा है। गुरबाणी दा खजाना, नाम दा खजाना, और फिर इस खजाने दे विच कदे

कथा है नरारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना पारी। उस सहज अवस्था नु प्राप्त करने वास्ते गुरमुख ने एक मंजिल तय करनी, किस रस्ते ते तुरना है। गुरमुख दा अपना एक रस्ता है, उस रस्ते दिया पैड़ा गुरु नानक ने छड़िया ने। तुसा वेखिया है कच्चे राहां ते एक बंदा लंघ जाए ना उहदे पैरां दे निशान पैंदे, दूजा वह बंदा जिसने वह पासा कदे ना वेखिया होवे इधर उधर झाकदा, जिधर पैरां दे निशान नजर आउण उधर तुर पैंदा, पैरां दे निशान डबल हो जाण दोहरे हो जाण। तीजे बंदे नूं इउं जापेगा जिवें इथों कोई एक नहीं कई जने लंघे, तीन बंदे चार बंदे लंघणगे पगडंडी बन जाए। जिसले तीन चार दे मगर लंघदियां लंघदियां उस पगडंडी ते लंघदियां लंघदियां सैकड़े बंदे लंघणगे ते राह बन जाए, जिसले हजारा लंघणगे ते शाहरा सड़क बन जाए। धन गुरु नानक ने तुहाडे वास्ते इक शाहराह दा मुढ बने, गुरमुख दे मार्ग दा मुढ बने। उस मार्ग ते गुरु नानक साहब भाई मरदाने नूं नाल लैके तुरदे ने पए, ते गुरु नानक साहब दे मगर भाई मरदाने दे मगर मगर किते राय बुलार तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते महाराज शिवनाभ तुरे जांदे नजर आउंदे, किते भाई भगीरथ तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते भाई बूढ़ा जी जांदे नजर आउंदे। इन्हां सारयां ने मिलके गुरु नानक दे मगर तुर तुर के इस पगडंडी नूं शाहराह दा रूप दित्ता है। साडे वास्ते बनी बनाई सड़क है, गुरमत गाडी राह है। इस गाडी राह ते तुरन वालियां ने एक मंजिल ते पहुंचना है। जेड़ा बंदा उस मंजिल ते पहुंचण दी तीव्रता लैके नहीं तुरदा, हौली चाले तुरदा या तुरदा ही नहीं, उस बंदे नूं सोचना चाहिए। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने बड़ी प्यारी गल कही, वो कहंदे ने

काची दे मानुख अभिमानी इस कची दे दे हंकार च मता होया गलतियां करदा चला जावे। स्वाद बाद झूठ विच रसा विच ईरख मद माया हंकार विच ईरखा विच माया विच इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भजन जग जीवन हर राया। मेरे वाहिगुरु जी तुसी इन्हां पापां दे दुख दूर करन जोग जिन्हां ने जगत नूं जीवन दिता है वह आत्मक जीवन भी बख सकते। सगल त्याग नानक शरणाया मैनू तां इन्ना भी पता नहीं जीवन मिलिया कादे लिए। कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फल पाया किस काम नूं तूं मैनू सिरजिया सी किस काम वास्ते मैनू जीवन मिलिया है केड़े पुन्ना करके जीवन मिल गया जन्म कवन फल पाया पहवने तरन तारन चिंता मर एक निमुख ना ए मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी मेरे साहिब जी असी तां एडे वड्डे गुनाहगार हां जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाव भगतनी साधी जिन्हें जिंदगी दिती है ओनू भी कदे चेते ना की। इन्हें अकिरत कहन के जिसने जिंदगी स्वास खान पान भोजन पहरान सब कुछ बख्शिया है ओदा ही चेता कोई पर धन केड़े पासे मन लगा है लोकां दे धन वल वेखदे आ लोकां दे सहीरां वल वेखदे आ पर धन पर धन परती निंदा बुराईयां भी लोकां दीयां वेखियां ने अपनियां नजर नहीं आई लोकां दी निंदिया करदे रह गए ते अपनियां नेकियां दीयां फड़ां मारदे रह गए अपनियां बुराईयां वल ध्यान ना कीता पर अपवाद ना छूटे लोकां नाल झगड़े करदे आ रहे। आवा कौन होत है खुण खुण ए प्रसंग ना टूटे यही कारण है मेरा मुड़ मुड़ के जमना मरना बनिया होया आउना जाना ते भटकना बनी हुई है कहानी मुकण च नहीं पी आ। जे कर कथा होत हर संतन जिथे ता भगत जन बह के रब दी गल करदे ने ओथे एक निमुख ना कीनो मैं तेरा मन करके तन करके पूरे तौर ते मैथों एक पल भी जुड़िया नहीं जांदा मन करके मेरा ओथे फेरा नहीं पिया लगता टिकिया नहीं जांदा मैथों। लंपट चोर दूत मतवारे काम क्रोध लोभ मोह।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार दाम अवगुण को न चितार दाम गल से ती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता। यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया उस विच। सांझी गुरु नाल

मन बाचत सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे।

अब हूं ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटी, जुलम नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजा ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दिया नीयां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है।

सिखी किन्नी प्यारी है सिख नू, ओ मेरी मां नहीं, हो सकता है ओदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोल दियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक वारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ए तेनू छड़ देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, जाद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका अजे बहुते दिन नहीं होए, किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नू सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मावां कदों सिदको डोल दियां ने, ओ ते आख दियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नू तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लगोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल रहे।

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश की गई है। आप समूह संगत नू खालसा जी दे 300 साल जन्म दिवस की

0: देख तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों दे गुरुदेव?
0: खुंडकारा लकड़ी दे उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा है।
1: पटरा क्यों दे?
0: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोंदे ने। भगत नामदेव जी दास दे छीने सन ना, कपड़े धोंदे धोंदे अपनी आत्मा नु हरी नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु मैनू तेरे नाम की उंगली टेके जिन्नी के पटरे नु खुंडकारे दी।